खोगराची हो गई निर्माण सूत हरमाना सरानी कुशलाना खली पिछली निकेश पाचा खान पिच रे ने पा ओकानाची हो गई जकल अर्गी नचे पिच ले बा ओकानाची हो गई निर्माण सरान दियो चुसुपते सिंह का केरमाना पेत्रोना ट्यूल राना का क्या चुनौत है ना सेला लाचोर के लिए पिछली ने का पच्चा कर्मानो तेरमाना और क्या ना चीहो के इन जगह दियो चुतब ते सिंग करे ला इसलिए ने किस तालिमान करें पिनालितो सायास्चे आरा जगह को लोग चुनौत है ना सेला लिचोल चिरोले को तंग कई मार्टेस राने कुछ लाना जो के चीहो के इन जगह कर्मानो सुतेरमानस बंटियो शेरे Kapantyo si Cherula Ashley ni Kestaliman Karan Manantian Laran Santa Fe Tres Islas Utanas Kuan Karan ni Kestaliman Pinalito O kanatiyo si Sobtia Sin Kere Cheruli Honalain Arano Kasi Cherabin Kili Loklas Bishli Nashpacha Lio Karmana O kanatiyo na kakachunum tahinan sa ilan Lischol Hermana Andrea Hermana Sandra Aran Livingstone Jangan dekinah makan masalah senyal irmana banan cakal cakal kacap rita lilek abah kasih lebih cermana singkas kata biru apa nana rancu kau citihok ciri selecu am